0: सुनिए, इन्हें जानते हैं फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आदम, हमारे इस कन्फेशन वीडियो के हेल्प से कैन इजीली पुट अ स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। ही विल बी अ फ्री मैन सून आदम।
3: सेंड हिम राइट अवे।
0: जी।
5: द एंटायर विलेज वुड बेयर विटनेस टू दिस।
6: आरव, सेंड इट अप।

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी. फिर भी तुम इतने खुश हो.
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा. मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत में कर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते. हमें मिलना है. तुम देखो एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे.